चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत। देग तेग फतेह बिरग की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बलो जी वाहे गुरु बलो जी। सिखानु सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विश्वाह दान, प्रुसा दान, दाना सिरदाना मदान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल, धर्म

0: साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कियन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। स्वेदे

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में

मानतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम होएगा सुर साधना सवेरे 9:02 ते। अज इस प्रोग्राम च पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का गाया राग असावरी सुनवाया जाएगा।

रंगली धरती ये प्रोग्राम तुसी सुनोगी दोपहर 2:30 बजे। अज इस प्रोग्राम च मोहम्मद सदीक दे गाए कुछ लोक गीत सुनाए जाएंगे। अपनी दूजी सबत प्रोग्राम्स लैके आवांगे शामी 4 बजे। तो सबत शुरू विच तुसी सुफियाना कलाम सुनोगे उस्ताद हंस राज हंस होरां कोलों। शामी 4:30 बजे थानू लै चलांगे श्री दरबार साहब अमृतसर, जिथों तुसी शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे। ते सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार शाम 5:30 बजे। शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। अज इस प्रोग्राम च कम दियां गल्लां, सब दी पसंद तो इलावा हाड़ी दियां तेल बीज फसलां, इस बारे गलबात करेंगे डॉक्टर मनप्रीत सिंह जैतका।

शनिवार रात 7:40 ते वुमेन्स एशिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 दे सेमीफाइनल श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान दिया टीमां दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम च खेडे जाण वाले मैच दी कमेंट्री साडे दिल्ली केंद्र तो तुसी सुनोगे ते साडे बाकी दे प्रोग्राम्स तुसी साडी मोबाइल ऐप राही सुनोगे जिसका वेरवा इस तरह है। रात 7:40 ते सुनोगे प्रोग्राम समाचार दर्शन ते सब रंग प्रोग्राम सुनोगे रात 7:45 ते 8 लेके आवांगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है ते रात 9:30 निर्धारित रागा ते आधारित शब्द कीर्तन गायन सर्वन करोगे। रात 10:02 ते आनंद मानोगे प्रोग्राम सुर झनकार दा ते सरगम ए प्रोग्राम तुसी सुनोगे रात 10:30। समाचार ते मुख्य समाचार पूरे दिन विच अपने निर्धारित समय ते प्रसारित किए जाएंगे। असी अपने सुनने वाले नूं दस दिए कि चिट्ठे मिठे प्रोग्राम तुसी सुन सकते हो साडे DTH दी AIR पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र तो दोपहरे 3:00। ये सन साडे दिन विच बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स ते उन्हां दा प्रसारण समां।

0: नरेन्द्रमोदिना एतानि वक्तव्यानि फ्रांस देशस्य पैरिस नगरे समायोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनावसरे आभासीय माध्यमेन प्रकाशितानि।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अंतरिक्ष कक्षासु संवृद्धि संघर्ष स्थाने सहयोग भावना अल्पकालिक लाभ स्थाने शाश्वतता बहिष्करण स्थाने च समावेशिता प्राथमिक रूपेण स्यात् इति प्रतिपादितवान्। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनस्य भूमिकां प्रतिपादयन् श्री मोदी प्रोक्तवान् यत् स्वीय कार्यदक्षता कारणेन स्वीय ऐतिहासिक अभियानैश्च एतया संस्थया वैश्विक प्रशंसा समर्जिता। अष्टादशं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं श्वः प्रभृति नवदेहल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र समारप्स्यते। सम्मेलनम् आलक्ष्य भव्यायोजनस्य समग्र सज्जाः सम्प्रति अन्तिमे चरणे प्रविष्टाः। द्विदिवसीये शिखर सम्मेलने ब्राजील चीन मिस्र इथियोपिया इंडोनेशिया भारतम ईरान रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका संयुक्त अरब अमीरात इत्येतं समेत्य एकादश प्रमुखाः विकासशील अर्थव्यवस्थाः मञ्चं धारयिष्यन्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां समायोक्ष्यमाणस्य एतस्य शिखर सम्मेलनस्य विषयः नवाचार सहकार सतत विकासाय च निर्माणमिति। शिखर सम्मेलने रूस देशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ चीन देशीयः राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग इत्यसौ दक्षिण अफ्रीकायाः राष्ट्रपतिः सिरिल रामाफोसा इत्यसौ मिश्र देशीयः राष्ट्रपतिः अब्दुल फतह अल सीसी इंडोनेशियायाः राष्ट्रपतिः प्रब्रुवो सुबियांतो ईरान देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेकिश्कियन इत्यसौ अबुधाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायान इत्यसौ अथ इथियोपियायाः प्रधानमंत्री अबी अहमद अली इत्येतं समेत्य वैश्विक नेतारः सम्मेलने भागं भजिष्यन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम् आलक्ष्य दिल्ली यातायात आरक्षी बलेन संसूचितं यत् अद्य मध्याह्ने द्विवादनतः सार्ध अष्टवादन पर्यन्तं प्रमुख मार्गेषु यातायाते परिवर्तनं नियन्त्रिता च व्यवस्थिता प्रभवेत। आरक्षी बलानुसारेण आपत्कालिकाः आवश्यकाश्च सेवाः प्राथम्यं भजेरन्। सममेव दिल्ली मेट्रो यान विभागेनापि आवश्यकाः सूचनाः प्रसारिताः। अन्ते च क्रीडा वार्तासु महिला क्रिकेट एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्य चक्रे गतरात्रौ भारत बांग्लादेश दलयोः मध्ये समायोजितवे द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेश दलं 40 धावनांकैः पराभूय एशिया चषक स्पर्धायाः निर्णायके चक्रे स्थानं संप्राप्तम्। दुबई नगरे अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रांगणे समायोजिते एतस्मिन् द्वन्द्वे भारतेन प्रथमं दण्डेन क्रीडयता स्पर्धा विजिता इति वार्ताः।
2: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बज रहे ने, आओ सुनो हुण तक दे मुख समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस विच अंतरराष्ट्रीय पुलाड़ सम्मेलन नूं वीडियो कॉन्फ्रेंस राही संबोधन किया। उन्हें कहा कि भारत एक सुरक्षित शांतिपूर्ण ते निरंतरन रहन योग पुलाड़ खेतर दा समर्थन करता है। चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनफिंग ने इस हफ्ते नवी दिल्ली विच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विच शामिल होने लई भारत आउणगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली च इस्माइली मुस्लिम भाईचारे दे

0: क्या महक है, क्या खुशबू है।
1: तुहानू दसां जी कि जिद्दां कुदरत दे हर जर्रे च एक हुनर है, एक कला है ना, इसे तरह हर बंदे दे मन अंदर भी कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई कला जरूर होंदी है। कोई चंगा लिख सकता हुंदा, कोई चंगा गा सकता हुंदा, कोई चित्रकारी वधिया कर सकता हुंदा, हर कोई किसी ना किसी सिरजना किसी ना किसी कला दे नाल ही जन्म लैंदा। पर हुंदा की है जी कि जदों जिम्मेदारियां वधदियां ने, हालात बदलते ने, घर के खर्चे नूं चलाउण दी जिम्मेदारी सिर ते आउंदी है, तो फिर ये जिहड़ी कला है ना, ये साडी सिरजना, ये दबी रह जाती है। असीं इहनूं भुल जाने ते अपनियां जिम्मेदारियां च रुझ जाने। पर कुछ बंदे हुंदे ने कि जिहड़े चलदियां जिम्मेदारियां दे नाल नाल अपने अंदर दी सिरजना नूं दबण नहीं दिंदे, मरण नहीं दिंदे। जे किसी नूं गाउण दा शौक है या कुछ लिखण दा शौक है ते ओह अपनियां जिम्मेदारियां दे नाल नाल तड़के उठ के जां देर रात अपनी इस सिरजना दे नाल कुछ पल बिताउंदा है ते अपने अंदर दी कला नूं जिंदा रखदा। अजकल दे समय च आपां देखदे हां जी कि सोशल मीडिया ते बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इदां दे ने जिहड़े अपनी जॉब कर रहे ने पर नाल नाल अपनी इस सिरजना दे नाल जी के अपने आप नूं संतुष्ट भी रखते ने ते कुछ पैसा भी कमाते ने। सो जिंदगी च चलदियां जिम्मेदारियां निभाउणियां जरूरी ने, पर जिहड़ी तुहाडे अंदर दी सिरजना है, कला है, हुनर है, उहनूं जिंदा रखना भी जरूरी है, क्योंकि वह सानूं सकून, संतुष्टि ते जिंदगी जीउण दी प्रेरणा दिंदी है। सो इस करके जे अपने अंदर दे हुनर, अपने अंदर दी कला नूं तुसीं भुल गए हो ना, ते उहदे नाल कुछ पल बिताउण दी कोशिश करो, ये संगत तुहानूं ताज़ा रखेगी। वैसे अगला जिहड़ा गीत सुना रहे हां, ये संगत भी तुहानूं ताज़ा रखेगी। सुनदे रहो आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम सोहणी सवेर।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक।

0: अमित मिश्रा, शिल्पा राव ते साथियों की आवाज़ तुसी ए दिल है मुश्किल फिल्म का गीत सुन रहे सी आकाशवाणी जलंधर तो सोनी स्वीट प्रोग्राम च। वेखो जी, असी तुहाडी रूह की खुराक का पूरा पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं, पर जिहड़ी शरीर की खुराक है उहदा बंदोबस्त ते तुसी आप ही करना है। ते अजकल जिहड़े डॉक्टर्स ने ना, वो कह रहे हैं कि साडा लाइफ स्टाइल, साडा खाना पीना इदां दा हुंदा जा रहा है कि हार्ट अटैक जिहड़ा पहलां बजुर्गों नूं वड्डी उम्र के लोगों नूं होया करदा सी, अजकल नौजवानों नूं भी हो रहा। छोटी उम्र के बहुत सारे नौजवान देखे गए ने जिन्हां नूं दिल दे नाल जुड़ियां समस्यावां ने। ते कारण इक्को ही कि आपां सारा दिन घर विच कमरे च बैठे रहिंदे आं, वर्कआउट करदे नहीं, खाण पीण वल असीं ध्यान नहीं दिंदे, कोई टाइम नहीं हुंदा। ते जे कुछ खाने पीने आ ते उह फास्ट फूड जां जंक फूड हुंदा है जो साडी सेहत दा नुकसान करदा है। सो जी, अज दे समय च जिथे साडे कोल टैक्नोलॉजी दे इन्ने वधिया वधिया साधन ने, उहदे च बड़ा जरूरी हो गया है कि असीं अपने खाण पाण दा, अपनी सेहत दा ख्याल रखीए। जिहड़ी साडी कुदरती खुराक है ना, उहदे वल ध्यान देईए। अच्छा, जिहड़ी साडी कुदरती खुराक है ना, इहदे च बहुत सारियां इदां दीआं चीज़ां ने जो सानूं तंदुरुस्त रखदीआं। हुण जिद्दां मिसाल दे तौर ते करेला, इहदी सब्ज़ी तुहानूं शायद इन्नी स्वाद ना लगदी होवे, पर करेला साडी सेहत लई, साडे शरीर लई इन्ना फायदेमंद है ना, तुसीं अंदाज़ा नहीं ला सकदे। वैसे डॉक्टर गुनीत होरां ने पूरा पूरा अंदाज़ा लाया कि करेला साडा कित्थों तक फायदा कर सकदा। आओ फिर उन्हां दी गल्लबात ध्यान नाल सुणीए ते जाणीए कि करेले दी सब्ज़ी दे फायदे किन्ने ने।
1: शुगर दे विच इहदा जिहड़ा प्रयोग है, डायबिटीज़ जिहनूं आपां कहिंदे आ, उहदे च सारिआं नूं ही पता है कि शुगर दे विच इहदा उपयोग जिहड़ा कीता जांदा है। करेले दे जिहड़े बीज हैगे आ उहनूं 2 तों 3 ग्राम, करेले का फल हुंदा उहदे अंदर उहदे बीज हुंदे आ, उहनां नूं 2 तों 3 ग्राम जिहड़ा हैगा पाणी नाल 2-2 वार

नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्र

0: राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में

0: सुधार होना चाहिए।
1: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: 4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, SEBI के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी ने एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
6: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई।

0: है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और public@airnewsalerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है, ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है, बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. 18th BRICS summit to begin at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. Russian President Vladimir Putin arrives in New Delhi to attend the summit. IMF describes India a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in first quarter of current fiscal. Trump administration proposes scrapping 60-day grace period for laid-off H-1B workers in US. National Testing Agency releases provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs in first semi-final of Women's Asia Cup 2026 in Dubai. And the news in detail. The 18th BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. World leaders, including Russia,

दान की दिशा लचकीलापन नवीनता सहयोग अते निरंतर रहन योग विकास ले निर्माण है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फाता अलसीसी, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अते ईरानी राष्ट्रपति मसूद पिजिशिया सम्मेलन विच हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के वली अहद शहजादे शेख खालिद बिन मुहम्मद बिन जायद अल नायान अते इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली भी हिस्सा लेंगे। ब्राजील की नुमाइंदगी विदेश मंत्री मोरो वियेरा करेंगे, जदों की सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान अल सऊद कॉन्फ्रेंस विच हिस्सा लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम अते वियतनामी प्रधानमंत्री ले मिनहांग भी इस कॉन्फ्रेंस विच हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल अंतोनियो गुतरेस, विश्व सेहत संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदानोम घेब्रियासिस, न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुखी दिलमा रोसेव समेत कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुखी भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने लिए नवी दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे से उनका स्वागत विदेश राज मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच किया है कि भारत और रूस दरमियान मजबूत और बहुपक्षी संबंध ने जो लंबे समय तो चली आ रही विशेष रणनीतिक भाईवाली से आधारित ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल दवली गलबात करने की उम्मीद है। रूसी राष्ट्रपति और ब्राजील के विदेश मंत्री कल रात नवी दिल्ली पहुंचे। दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति आज सवेरे राजधानी पहुंच रहे ने। ईरान, इंडोनेशिया, मिस्र, फिलीपींस अते बुरुंडी दे राष्ट्रमुखी अबूधाबी दे वली अहद शहजादे अते मलेशिया ते इथियोपिया दे प्रधानमंत्री भी आज बाद विच नवी दिल्ली पहुंचणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन तो इलावा कई देशां दे नेतावां नाल दवलियां मीटिंगां करनगे। ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2026 आज नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे कराया जाएगा। दिन भर चलने वाले इस प्रोग्राम विच मैंबर देशों के 1000 तो वध कारपोरेट कार्यकारी व्यापार मंत्री मालियागू माली आलमी निवेशक अते सनत नवीनताकार एक थां इकट्ठे होणगे। ए ब्रिक्स बिजनेस कौंसल वालों प्रमुख सिखरले चैंबरां फिक्की सीआईआई अते एसोचैम नाल भाईवाली विच कराया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय माली फंड ने भारत नूं विश्व आर्थिक विकास का मुख चालक दस्सिया है। यह गल भारत की आर्थिकता से मौजूदा माली साल की पहली तिमाही में 7.8% के वाधे तो बाद सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय माली फंड के संचार विभाग के डायरेक्टर जूली कोजैक ने कहा है कि भारत की आर्थिकता ने उम्मीद नालों बेहतर कारगुजारी दिखाई है, मुख्य तौर पर सेवावां अते बरामदां विच वाधे कारण। उन्हें अगे कहा कि वाधा उस समय होया जदों वधदियां ऊर्जा कीमतों ने आर्थिकता नूं प्रभावित किया। उन्हें यह भी दस्सिया कि भारत के नवे GDP अंकड़ों में सनती उत्पादन अते उत्पादक कीमतों बारे नवा डेटा भी शामिल है, जिस नाल भारत के GDP अंकड़ों में होर सुधार होगा। अंतरराष्ट्रीय माली फंड ने भी कहा है कि वह भारत की आर्थिकता से वधदियां तेल कीमतों के प्रभाव की निगरानी कर रहा है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तो दादरा ते नगर हवेली अते दमन ते दीव दे दो दिना दौरे ते होणगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा ते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सरकारी कॉलेज विखे एक जनतक समागम विच शामिल होणगे। वो सिलवासा के प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे, जिन्हां विच स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर अते नमो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च शामिल ने। उपराष्ट्रपति दमन के नमो अस्पताल का भी दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन दमन नाइट मार्केट, राम सेतु सी फ्रंट अते नमोपद सी फ्रंट समेत वख-वख सैर सपाटा स्थानों का भी दौरा करेंगे। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तजवीज़शुदा नवा बीज कानून किसानों के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा करेगा। नवी दिल्ली विच किसान संगठनों नाल एक मीटिंग विच उन्होंने कहा कि किसान पहला वांग अपने रवायती अते अपने बीजा की वरतों सांझा करनगे ते वेच सकणगे। इन्हां बीजा की रजिस्ट्रेशन की लोड़ नहीं होगी। श्री चौहान ने कहा कि मौजूदा बीज कानून 1966 विच बनाया गया सी अते हुण नकली अते घटिया बीजा वर्गियां नवीं चुनौतियां दा हल करन लई बदला जरूरी ने। तजवीजशुदा कानून तहत हर राज विच एक बीज सुरक्षा फंड कायम किया जाएगा। बीज खराब होण जां फसलां दे नुकसान दी स्थिति विच किसानां नूं 15 दिनां दे अंदर मुआवजा दिता जाएगा।

जो ये ट्रेन है इसमें जो बोर्डिंग पॉइंट्स रहेंगे हमारे, जम्मू से चलकर पठानकोट, अमृतसर, जलंधर सिटी, लुधियाना, अंबाला, चंडीगढ़, और उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली होते हुए हम लोग ग्वालियर तक इसकी बोर्डिंग लेंगे। मुख्यतः रूप से इसमें तीन कैटेगरीज हैं पैकेजेस की। एक है आपका कंफर्ट कैटेगरी जो सेकंड एसी है, दूसरी जो कैटेगरी हमारी स्टैंडर्ड कैटेगरी जो कि थर्ड एसी है, और तीसरी जो कैटेगरी है वो हमारी है इकॉनमी कैटेगरी जिसको स्लीपर क्लास कैटेगरी बोलते हैं। तो इन तीनों कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। जो कंफर्ट कैटेगरी है जिसमें पैसेंजर जो है सेकंड एसी के अंदर ट्रैवल करेंगे और उसमें जो उनका स्टे वगैरह रहेगा

सेकेंड एसी है, दूसरी जो कैटेगरी है हमारी स्टैंडर्ड कैटेगरी जो कि थर्ड एसी है, और तीसरी जो कैटेगरी है वो हमारी है इकोनॉमी कैटेगरी जिसको स्लीपर क्लास कैटेगरी बोलते हैं। तो इन तीनों कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। जो कंफर्ट कैटेगरी है जिसमें पैसेंजर जो है सेकेंड एसी के अंदर ट्रैवल करेंगे और उसमें जो उनका स्टे वगैरह रहेगा होटल का वो एसी होटल्स रहेगा और साइट सीइंग के लिए एसी ट्रांसपोर्टेशन रहेगी। जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो है आप स्टैंडर्ड कैटेगरी जिसमें पैसेंजर जो ट्रैवल करेंगे वो थर्ड एसी के अंदर ट्रैवल करेंगे, उनके रहने के लिए एसी होटल रहेगा लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो नॉन एसी रहेगी। और हमारी जो तीसरी कैटेगरी है वो है स्लीपर क्लास जिसमें जो ट्रांसपोर्टेशन और रेल जर्नी दोनों ही नॉन एसी रहेंगी, ट्रेन जर्नी जो है वो आपकी स्लीपर क्लास में रहेगी। इस यात्रा के थ्रू हम लोग 5 मुख्य पर्यटन केंद्र कवर करने जा रहे हैं जो कि है आपका तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी एंड मल्लिकार्जुन। ये 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जो दक्षिण भारत में पड़ते हैं। इसका रीजन ये है कि नॉर्थ से हमने साउथ के लिए कोई बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी हमारे पास है नहीं और प्लस हमने 5 के 5 जो डेस्टिनेशन है एक सिंगल जर्नी के अंदर ही हम लोगों ने रखा है ताकि लोग एक स्पेशल ट्रेन के अंदर बैठे और यही स्पेशल ट्रेन जो है 12 रात 13 दिन की यात्रा कवर करके वापस जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स को ड्रॉप करेगी। तो उनको बार बार एक तो ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं है, यही स्पेशल ट्रेन रहेगी जो 13 दिन की यात्रा है उनको इसी ट्रेन के अंदर 13 दिन की यात्रा करनी है। प्लस जो पैकेज है ये एक फुली लोडेड पैकेज है, इसके अंदर आपका रहना, तीनों टाइम का खाना, सुबह शाम का चाय, नाश्ता और सारी की सारी साइट सीइंग आपकी इंक्लूड रहेंगी। और जो पैकेज प्राइस है आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, जो स्लीपर क्लास है उसकी जो जो पैकेज प्राइस है वो लगभग 26,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। जो दूसरी कैटेगरी है हमारी स्टैंडर्ड कैटेगरी उसकी जो पैकेज प्राइस है वो प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये है लगभग। और जो तीसरी हमारी कैटेगरी है वो है कम्फर्ट कैटेगरी जिसमें जो प्राइस है प्रति व्यक्ति वो 56,000 रुपये 56,000 रुपीज प्रति व्यक्ति है। तो आपके माध्यम से मैं जलंधर के लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, जो इस धार्मिक यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं तो भारी संख्या में आए। बुकिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है, बुकिंग के 2 माध्यम है, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो हमारी जो अधिकृत वेबसाइट है www.irctourism.com वहां पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन मोड में करना है तो उनको फिर चंडीगढ़ आना पड़ेगा क्योंकि चंडीगढ़ में हमारा क्षेत्रीय कार्यालय सेक्टर 34 में है। तो मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि इस टूर पैकेज को अपना आशीर्वाद दें और मैक्सिमम बुकिंग करें। अगर हमारा रिस्पॉन्स अच्छा रहता है जलंधर से तो और भी ट्रेन जो है डिफरेंट जो डेस्टिनेशन है ऑल इंडिया, वेस्ट में, ईस्ट में, बाकी सब जगह भी हम लोग ट्रेन को आगे चलाएंगे। तो रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो सर्टेनली हम और अपने नए टूर पैकेजेस धार्मिक यात्राएं लेकर आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, अगर जो आपने एक बार अमाउंट पे कर दी, आदमी जलंधर से बैठेगा और जलंधर से बैठ के वापस को जलंधर में ड्रॉप करेंगे। स्टेशन से जैसे आप तिरुपति पहुंचे तो तिरुपति स्टेशन गाड़ी पहुंचेगी तो रेलवे स्टेशन के बाहर हमारी बसेस खड़ी रहेंगी पैसेंजर्स को लेने के लिए। बसेस में पैसेंजर जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव होटल में जाएंगे, उसके बाद एज पर आइटनरी उनकी साइट सीइंग के लिए उनको होटल से पिक करेंगे और साइट सीइंग करा के वापस उनको होटल में ड्रॉप करेंगे। तो इसमें ये मैंने जैसे पहले भी बताया था कि फुली लोडेड पैकेज है, आपने जो प्राइस दी है वो एक कंप्लीट पैकेज की प्राइस दी है जिसमें आपका रहना, तीनों टाइम का खाना, साइट सीइंग सब कुछ इंक्लूड रहेगा। के अंदर है हमारे पास 1 सेकेंड एसी का कोच है, 3 हमारे पास 3rd एसी के कोच है और 6 कोच जो है हमारे पास स्लीपर क्लास के कोच। देखिए इसके अंदर जो अगर कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है किसी के साथ, फर्स्ट एड बॉक्स तो ट्रेन के अंदर 24 घंटे अवेलेबल रहता है, खांसी सर्दी बुखार जुकाम की दवाइयां तो रहती है, लेकिन जहां पर एक्सपर्टीज कोई जरूरत होती है तो भी नेक्स्ट अवेलेबल स्टेशन के ऊपर हम इन्फॉर्म करके डॉक्टर की व्यवस्था करवाते हैं। मैं आपको जो हमारी कैंसिलेशन पॉलिसी है आपके माध्यम से मैं वो भी बता देता हूँ। जो 15 दिन से पहले डिपार्चर से ₹250 प्रति व्यक्ति हम लोग कैंसिलेशन चार्ज लेते हैं। 8 से 14 दिन के बीच में हम 50% पैकेज कॉस्ट का चार्ज लेते हैं और 4 से 7 दिन के बीच में 75% ऑफ द पैकेज कॉस्ट है और लेस देन 4 डेज है तो वो 100% कैंसिलेशन कॉस्ट में आएगा, उसमें फिर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसमें जो भी खाना बनेगा, ऑलरेडी पेंट्री से सुसज्जित ट्रेन है ये, हमारे पेंट्री जो है जो IRCTC की जो स्टाफ है जो पेंट्री जो रहेगा उसमें पेंट्री में ही गर्मा गर्म खाना बनेगा, इसमें कोई बाहर का वेंडर अलाउड ही नहीं है। स्पेशल ट्रेन है हमारी पेंट्री।

0: है जो पैसेंजर को जो भी खाना बने बन जाएगा वो पेंट्री से ही बनकर जाएगा, और प्योर वेज खाना दिया जाएगा, इसमें नॉन वेज खाना नहीं है क्योंकि धार्मिक यात्रा है। ये जो ट्रेन है ये 12 रात 13 दिन का टूर है, टोटल जर्नी 13 दिन की है, और ये 14 नवंबर को जम्मू से चलेगी और 26 नवंबर को वापस ये ट्रेन अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट करके वापस जम्मू पहुंच।
1: एसी IRCTC वालों भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन राही दक्षिणी भारत यात्रा शुरू करन संबंधी रेडियो रिपोर्ट। सहायक सोनिया, रविशंकर, पेशकश आकाशवाणी जलंधर।
2: एसी रेडियो रिपोर्ट, असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मैं एक पंजाब दी, आओ सुनते हैं इस प्रोग्राम च कुछ पंजाबी फिल्मी गीत।

मिनट माचरे ने आओ सुनदिया शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। अज इस प्रोग्राम च पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का गाया राग असावरी सुनोगे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
4: हेलो,
5: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं।
6: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

जी हैलो फरमाइश प्रोग्राम शुरू हो चुके थे। प्रोग्राम का शुरुआती गीत भी असी थोनों सुनाता प्यारा जिहा सी, दर्द फिल्म चो लिया गया सी, किशोर कुमार ते आशा भोसले दी आवाज़ा विच। सो प्रोग्राम शुरू करते ही साढ़े कोल कॉल दा सिलसिला शुरू हो चुका है ते हुण शामिल करन जा रहे हैं प्रोग्राम की पहली कॉल। ते आओ देखदे हां गलबात करके फरमाइश खड़ी कर रहे ने गीत नूं सुनन दी। हैलो हैलो हैलो जी, राबता लगता साडा टुट गया अपने कॉलरस दे नाल, पर कोई ना सानू फरमाइश की सीगी जलंधर तो ही, ते फरमाइश की सी फिल्म आए दिन बहार के फिल्म चो सुनन लई इस गीत दी। ते आओ सुनदे हां असी भी मोहम्मद रफी दी आवाज़ विच गीत फिल्म आए दिन बहार के चो लिया गया।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बुड्ढे अते जवान सौ गल्ला दी एक गला सही
1: सिर्फ पैसे भेजन ले QR कोड स्कैन करी दा है जा पिन पाई दा है पैसे मिलन ले नहीं
2: RBI कहंदा है QR कोड स्कैन करदे समय जा पिन पौंदे समय थोड़ा ध्यान नाल

0: जी, इसकी तो बात देखते हैं अगली किस गीत की फरमाइश सर्कुल करन जा रहे ने साडे अगले कॉलर। हेलो हेलो,
1: हेलो भैन जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन गल बात कर रहे हो?
1: मैं बलविंदर बिल्ला माधोपुरी, पिंड माधोपुर, चौंक बत्तियां वाला, जिला श्री फतेहगढ़ साहब तो बोलता भैन जी।
0: जी, बड़ी लंबी इंट्रोडक्शन तुसी दित्ती अपनी, पर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा इस प्रोग्राम दे विच। ते गाना केड़ा सुनोगे अज?
1: गाना जी रोटी कपड़ा और मकान दा गीत है जी। गीत दे बोल ने, है जे मजबूरी, जे मौसम है जे दूरी, समय पल पल है तड़फाए, तेरी दो टकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए।
0: जी, बहुत सोहना गाते हो तुसी, पर सावन ते निकल गया, पर तुहानू गीत अजे भी सावन
1: हाँ
0: दे
1: जी, चलो
0: पसंद
1: गीत
0: है।
1: आप जद मर्जी सुन सकते हैं भैन
0: जी,
1: जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने लिए। अपना मनपसंद गीत
1: ठीक
0: सुनो।
1: है जी, ओके जी।

0: जी दोस्तों, 10:45 ते 50 सैकेंट बज चुके ने। प्रोग्राम हैलो फरमाइश चल रहा है। तो जेकर इस प्रोग्राम विच जांदे जांदे अपने मनपसंद गीत सुनने की कोशिश करोगे तो शायद तुहाडी कॉल भी इस प्रोग्राम च लग जाए। सो नंबर नोट करो 0181 43 173, तो शायद तुसी भी अपने मनपसंद गीत फरमाइश करके साढ़े को सुन सको। सो एक होर कॉलर आके जुड़ चुके ने, आओ गलबात करते हैं। हैलो हैलो, सत श्रीकाल जी, कौन गलबात कर रहे हो?
1: मैं रामनाथ बोलदा गुआंढी फतेहगढ़ साहब तों
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च रामनाथ जी। गीत केड़ा सुनोगे अज?
1: बहुत धन्यवाद भगवान जी।
0: हां जी, अपने गाने दी फरमाइश दसो।
1: गबन फिल्म दा गीत है भगवान जी।
0: जी, गबन फिल्म दा गीत सुनना चाहते हो?
1: हां जी, रवि राव ने गावा जी।
0: जी जी जी,
1: हां जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने लिए।
1: तुम्हारा दोस्त है
0: जी। जी जी, तुसी अपनी फरमाइश दस दी थी, असि हुणे पूरी करन लगे हां। सो बहुत बहुत शुक्रिया फोन च फोन करन लिए, प्रोग्राम च शामिल होण लिए।
1: सत श्री अकाल भगवान
0: जी। सत श्री अकाल जी।

0: जी खट्टे मिट्टे प्यारे प्यारे रंग बिरंगे गीतां दा एक प्रोग्राम है हैलो फरमाइश। तो इस प्रोग्राम दे विच हुण असीं लैण जा रहे हां प्रोग्राम दी आखरी कॉल। तो देखते हैं कौन ने कॉलर साडे नाल आ के जुड़ चुके। हैलो हैलो।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: जगदीश शर्मा हीरा वाली फाजिलका से बोल रहा हूँ जी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है जी आपका इस प्रोग्राम में।
1: हाँ जी प्रोग्राम में
0: जी,
1: ये मैंने तो बोला था जी मोहम्मद रफी का सुना दो।
0: जी जी जी जी, तो आपकी फरमाइश, आपकी फरमाइश हमने पूरी करने लगे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: हाँ जी।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास लगातार जारी हैं।
2: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: एक दिवसीय कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधिकर्ता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसओचैम के सहयोग से हो रहा है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। एक रिपोर्ट।
3: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए

0: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवो ओजुकवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। विद्युत तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल 14 से 16 सितंबर तक अमेरिका के ह्यूस्टन में होने वाली G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। अमेरिका की G20 अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में G20 देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, किफायती ऊर्जा, अवसंरचना के लिए विकास और मजबूत ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 11:05 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ।

मैश भेज रहे ने जी, डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम ते दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर तो श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद ते परमानंद आर्य, सरिमपुर बक्सर तो राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी ते इकबाल मस्तान, हरजीत कैंत मौजी कलोनी डाबा लुधियाना तो सानू फरमाइश भेज रहे हैं। आओ सुनते हैं इन्होंने सारे की मिली जुली फरमाइश ते बलकार सिद्धू की आवाज़ में एक ही।

0: ਇਸੇ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवो ओजोफू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अपनी आर्थिक शक्ति को अपने लोगों के लिए रोजगार, धन और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग की व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है।
2: This year is a milestone.
3: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की

0: की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,352 पर रहा। एशिया कप महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। कल भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 12:05 ते 4 सेकंड हुए ने। हुण पेश परिवारिक प्रोग्राम वास्ते फीड़े।

0: जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: आज तक इस योजना नाल 9,50,00,000 तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके ने। जे तुसी भी 18 to 40 साल की उम्र के हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटेड लाभों की जानकारी ले अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
2: जी मुड़ वापस आए हैं ते इस वेले टाइम है साडा गुणकारी रसोई दा, ते गुणकारी रसोई दे विच गल शुरू करते हैं कि कढ़ी पत्ता।
3: वाह जी वाह, कढ़ी पत्ता मतलब तुहानू पता कढ़ी पत्ता नू की कहिंदे, होर की नाम है इहदा, इहनू एजेंट कहिंदे जे।
2: अच्छा
3: हाँ, यह रसोई का एजेंट है क्योंकि इन्हें हर सब्जी के जाना हों और सब्जियां का स्वाद लैके ना, तो फिर इन्हें अपना अपनी कार्रवाई पानी होंगी है,
2: अपनी कार्रवाई पानी होंगी है, तो सारी सब्जी तो राज करना शुरू कर देंगे भी कड़ी पत्ता पाया तो सब्जी स्वाद हो।
3: हाँ
2: सही आख्या तुसीं हरप्रीत, जे असी कड़ी पत्ता दे फायदे दे वल झात मारीए ना, सब्जियां च ते पैंदा ही पैंदा, ते जे कितें तुसीं दही च भी थोड़ा जिहा तुड़के पा दोगे ना ते दही भी बड़ा स्वाद बन जांदा।
3: मतलब देखो किन्ने निक्का जिहा पत्ता साढ़े घर लगता है, ज़्यादातर यह सिर्फ सानू सर्दियों च नहीं मिलता, सर्दियों च थोड़ा घट मिलता है, पर आम बाकी हर मौसम के विच चाहे वह मीह होवे जो जिहड़ा मर्जी मौसम हो जाए सानू कड़ी पत्ता मिल ही जाता है। और कड़ी पत्ता जो मैं छोटी सी मैं लगता सी कड़ी पत्ता मतलब कड़ी ही बनेगी तो ताई कड़ी पत्ता यूज़ होएगा
2: जी,
3: इस तरह नहीं है, काफ़ी सब्जियाँ जिदे विच कड़ी पत्ता पैंदा है।
2: अच्छा भी कड़ी पत्ते दे विच गुण भी बड़े ने, च प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट वाइटामिन सी, फिर ये वाइटामिन बी कैल्शियम, कैल्शियम बहुत होंदा इहदे विच, मैगनीशियम होंदा, ये तो चलो आम असी कहिए कि साढ़े जदों असी गुणकारी रसोई की गल करते हैं सवाणियों वास्ते भी इन्ने ना याद रखने की लोड़ नहीं, ये समझ लो कि तुसी बड़ा कंप्लीट जदों कड़ी पत्ता पाता तो एक जड़ा आहार ताडा बनना है सब्जी बननी है वो बहुत स्वाद ही नहीं होनी, वो ताकतवर भी होनी है किसी ना किसी तरीके दे नाल। ये कहा जाता है कि कड़ी पत्ता जड़ा है वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता, एंटीऑक्सीडेंट जड़े आ सानू बहुत जरूरी होंदे आ, खास करके जिहड़ी साडे शरीर दे विच इनफ्लामेशन हो जाती है उहदे लई। फिर इत्थों तक जड़ियाँ स्टडीज़ हुई ने वो कहिंदियां ने कि कड़ी पत्ता, हरप्रीत जी गल बहुत सुनन वाली है कि जड़े डायबिटिक पेशेंट हुंदे ना, शुगर पेशेंट हुंदे आ, ये कड़ी पत्ता उन्हां लई भी चंगा हुंदा, ये किते ना किते उन्हूं भी कंट्रोल करदा, इंसुलिन जड़ी है उहदा जड़ा कह लो कि
3: लैवल है,
2: लैवल आ उहनूं बरकरार रखदा।
3: ते जदों असी शुगर की गल करते हैं ना तो जिहड़ी एक आम प्रॉब्लम हर किसी नूं अजकल दे जमाने च हो ही रही है, पहला नहीं हुंदी सी, हुण ज़्यादा ब्लड प्रैशर।
2: जी
3: जी, ब्लड प्रैशर दे उत्ते भी इहदा बहुत ज़्यादा बेनीफिट है कि जदों असी कड़ी पत्ते का सेवन करते हाँ तो ब्लड प्रैशर का भी उत्ते भी तुहानूं बेनीफिट हुंदा, तुहाडा बैलेंस रहिंदा ना वधदा ना घटदा।
2: मैं इत्थे इन्ना जरूर नाल ऐड करदी हाँ हरप्रीत जी, जिहड़ी आपां गल कर रहे हां पई साडियां जिहड़ियां बीबियां भैणां सवाणियां ये सुन रही ने साडा प्रोग्राम, इत्थे याद रखियो कि जेकर तुसीं डायबिटीज़ शूगर की बीपी की दवाई खा रहे हो तो ये ना सोचो कि तुसीं कड़ी पत्ता खा लोगे तो दवाई छड़ दोगे, तुहानू इस चीज़ का डॉक्टर दे नाल जरूर किते ना किते तुहानू डिस्कस करना चाहिए, पहलों डिस्कस करके फिर तुसीं इस गल दे उत्ते आओ, क्योंकि ज़्यादा कड़ी पत्ता जदों असीं खाने आ ना वो कहिंदे भी कच्चा ज़्यादा खा लो जी ये ठीक हो जाता है, नहीं
3: नहीं
2: तुहाडा ब्लड प्रैशर लो हो जाएगा क्योंकि तुसीं दवाई भी खा रहे हो तो तुसीं नाल कड़ी पत्ता खाई जा रहे हो। सो तुहानू इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि तुसी जदों भी कोई भी रसोई च इस तरह का असी गल करते हैं गुणकारी चीज़ कोई भी खाते हो पर तुहानू डॉक्टर दे नाल ये गल जरूर कर लेनी चाहिए है क्योंकि कोई भी चीज़ का वध घट खाधा वो किते ना किते नुकसानदेह हो जाता है।
3: तो एक चीज़ होर ये जी सानू ध्यान देने वाली है वह है कि कड़ी पत्ता का सेवन करन दे नाल साडा डाइजेशन जड़ा है ना उन्हों बहुत बेनीफिट हुंदा है, स्पैशली अगर किसी नूं दस्त लगे हुए ने
2: ते
3: वो फिर उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनीफिशियल हुंदा जदों तुसीं कड़ी पत्ते का सेवन करते हो।
2: लै तुसीं दस्त की गल की मैं कहन लगी सी जदों कब्जी होई हुंदी है तुसीं उदों ही कड़ी पत्ता खा लेंदे हो वो भी बहुत चंगा है सेहत लई,
3: मतलब दोनों चीज़ा कट्ठियां हो गया है ना बैलेंस, एदा मतलब कि कड़ी पत्ता एक ऐदा दी चीज़ होगी जिहड़ा साडे बॉडी दे विच संतुलन बनाउण दे विच उहदी बेनीफिट बहुत ज़्यादा है ना, कि ना कबज़ ते ना दस्त दो

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਵਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजोकवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
1: फॉर ब्रिक्स पर्टिकुलरली हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी,
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता है।
0: इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स टुडे represents almost

0: 1/4।
1: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
2: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 74,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी।
4: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 1:05 ते 10 सेकंड होए ने। हुण पेशे प्रोग्रामा दा फेरफार।

ढाई बजे प्रोग्राम सुनोगे रंगली धरती। अज इस विच मोहम्मद सदीक की आवाज़ च लोक गीत सुनवाए जाएंगे। साड़ी दूजी सभा शुरू होगी शाम 4 बजे। सभा दी शुरू च तुसी सुनोगे मुख खबरां। चार वल के 2 मिनट ते सूफियाना कलाम उस्ताद हंसराज हंस की आवाज विच सुनोगे। शाम 4:30 बजे श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार शाम 5:30 बजे।

शाम 6:30 बजे पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। अज इस विच कामलिया गल्लां, अज दे पा कल दे प्रोग्राम, मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल हाड़ी दियां तेज बीजा फसलां दे वास्ते डॉक्टर मनप्रीत सिंह जैत का दे नाल होई गल्लबात तुसी सुनोगे। इस तों इलावा सिलसिला होएगा सब दी पसंद।

शाम 7:30 बजे वुमेन्स एशिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के तहत दूसरे सेमीफाइनल च श्रीलंका ते पाकिस्तान दियां क्रिकेट टीमां दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम च खेडे जाण वाले मैच की ऑफ टू कमेंट्री मैच के शुरू तो अखीर तक तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तों।

फौजी वीरो जय हिंद। आइदर प्रोग्राम लेके हाजिर है सोनिया सैनी। सो प्रोग्राम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर ते भूपेंद्र सिंह ते गाए इस गीत नाल।

0: अपस्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वालों जनहित विच जारी।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
0: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
0: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे सुनने वालों का स्वागत करते हैं। आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम फौजी वीरा लई। प्रोग्राम च हुण सुनवाण जा रहे हैं फिल्म महबूबा दा गीत। आवाज है जी लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दी।

0: दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
4: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
4: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
4: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनने वालों का स्वागत करते हैं। आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम फौजी वीरां लई। प्रोग्राम च हुण सुनवा जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ च फिल्म शोले का गीत।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दोपहर बाद नवी दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल गलबात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी के सारे रूपों खिलाफ भारत का संकल्प अडोल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आत्मनिर्भरता के संकटों तो उभरने की योग्यता अज हर देश की आर्थिक रणनीति लिए महत्वपूर्ण बन गई है। केंद्रीय समाजिक न्याय ते शक्तिकरण राजमंत्री रामदास आठवले अज पंजाब दे एक दिन दौरे ते ने उह जलंधर दे डेरा सचखंड बल्लां च नतमस्तक होए ते जूनियर एशिया कप हाकी च मर्दां दे सैमीफाइनल च अज भारत दा मलेशिया नाल मुकाबला होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज दोपहर बाद नवी दिल्ली च रूस दे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल दुवल्ली गलबात करनगे। दोवां नेतावां वल्लों आपसी हितां दे मुद्दिआं ते चर्चा कीते जाण दी उम्मीद है। मीटिंग दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पछमी एशिया संकट, व्यापारक संबंध ते ऊर्जा सहयोग वर्गे मुद्दिआं ते चर्चा होण दी संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन अज सवेरे ब्रिक्स सम्मेलन विच शामिल होण लई भारत पहुंचे। श्री मोदी अज शाम ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशके नाल वी गलबात करनगे। ईरान दे राष्ट्रपति अज दुपहर बाद नवीं दिल्ली पहुंच रहे ने। पछमी एशिया दी मौजूदा स्थिति नूं देखदिआं इह मुलाकात महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र के सकत्र जनरल एंटोनियो गुतरेस नाल भी गलबात करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल तो शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स सम्मेलन लिए विश्व नेता नवी दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास प्रकट किया कि सम्मेलन में वख-वख मुद्दों पर सकारात्मक अते अर्थपूर्ण चर्चा होगी अते इसका उद्देश्य विश्व भलाई होगा। नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे होने वाले दो रोज़ा सम्मेलन च ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, साउदी अरब, दक्षण अफ्रीका ते संयुक्त अरब अमीरात समेत 11 प्रमुख उभरियां ते विकासशील अर्थव्यवस्था एक मंच ते होणगियां। सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फाता अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियन, आबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मुहम्मद बिन जायद अल नहायन समेत कई प्रमुख विश्व नेता शामिल होंगे। ब्राज़ील की नुमाइंदगी विदेश मंत्री मोरोवियरा करेंगे। साउदी अरब के विदेश मंत्री क्राउन प्रिंस फैसल बिन फरहान अल साउद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आत्मनिर्भरता के संकटों तो उभरने की योग्यता अज हर देश की आर्थिक रणनीति लिए महत्वपूर्ण बन गई है। इस तो अलावा मजबूत सहयोग और भाईवाली राही निरंतर विकास को उत्साहित करना भी जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर अज सवेरे नवी दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार फोरम को संबोधन करते हुए यह गल कही।
1: For BRICS particularly, higher economic activity,
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना।

0: और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता है।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि ਇਹ समूह मैंबर ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ अपने ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ, ਠੋਸ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
0: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: शंकर ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन अजय समय हो रहा है जब विश्व राजनीति ते आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण तब्दीलियां आ रही ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नवी दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन तो पहला अज रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव नाल मुलाकात की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारमन ने कहा कि दोहां नेतावां ने आपसी हित के मुद्दों, व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स सम्मेलन तो पहला अज नवी दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वीरा का स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहां नेतावां ने व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, खेतीबाड़ी और पुलाड़ के खेतरों में सहयोग वधाने समेत दुवाले संबंधों पर चर्चा की। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @ARRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। तो यूट्यूब से साडा चैनल है @ARR जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दहशतगर्दी का खतरा लगातार बढ़ रहा है पर इसके सारे रूपों विरुद्ध भारत का संकल्प पक्का है। अमरीका खौफनाक

0: के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है, क्योंकि इस ग्रुप के इदारा जाति ताउन के 20 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले बरसों के दौरान ब्रिक्स अपनी रुकनियत, एजेंडे और ताउन के तरीक़ेकार के लिहाज से नुमाया तौर पर तरक्की कर चुका है। न्यूज़ डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: इस दौरान रूस के इक्तसादी तरक्की के वजीर मक्सिम देशनिकोफ ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक आलमी मईशत के तकरीबन एक चौथाई हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं और ये एक पायदार मुस्तकबिल के लिए मजबूत आवाज़ हैं। ब्रिक्स आलमी मईशत में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। ग्रुप की उभरती हुई मईशत और तजारती अहमियत पर पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स में उभरती और तरक्की करती हुई 11 बड़ी मईशतें यकजा हुई हैं। इससे आलमी आबादी के तकरीबन 49.5%, आलमी GDP के तकरीबन 40% और आलमी तिजारत के तकरीबन 26% हिस्से की नुमाइंदगी होती है। ब्रिक्स ममालिक एक दूसरे को तकरीबन 1.10 ट्रिलियन डॉलर मालियत की अशिया बरामद करते हैं, जो उनकी मुश्तरका आलमी बरामदात के 18.8% हिस्से के बराबर है। ये ममालिक अपने साथी ब्रिक्स अरकान से 1.4 ट्रिलियन डॉलर मालियत की अशिया दरामद भी करते हैं, जो उनकी आलमी दरामदात का 21.6% हिस्सा है। ब्रिक्स मुल्कों के साथ ही भारतीय अशिया की मजमूई तिजारत 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर थी, जो 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गई है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं इरम नाज।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अगरचे दहशतगर्दी का खतरा मुसलसल नई शक्ल अख्तियार कर रहा है, भारत का हर किस्म के दहशतगर्दी की रोकथाम का अज़्म दस्तूर गैर मुतज़लज़ल है। अमरीका में होने वाले खतरनाक 9/11 दहशतगर्दाना हमलों के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि दहशतगर्दी के सबब दुनिया भर में बेशुमार इंसानी जानें तलफ हुई हैं। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार होने की हैसियत से भारत कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रहा है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत दहशतगर्दी की लानत से निपटने की तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। उन्होंने 2014 में अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़ 9/11 मेमोरियल और म्यूजियम के अपने दौरे की कुछ झलकियाँ भी शेयर की। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया कि मेट्रो खिदमात ब्रिक्स समिट के दौरान ट्रैफिक बंदिशों की वजह से इतवार को सभी लाइनों पर सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि यह फैसला इम्तहानात में शामिल होने वाले तलबा और आम लोगों के बआसानी और बरवक्त आने जाने में सहूलत के मकसद से किया गया है। चीन के मोकी शहर में जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम सेमीफाइनल में मलेशिया की टीम के साथ खेलेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:15 से खेला जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन एरिना सेबालेंका और दूसरे दर्जे की एलिना रिबाकिना ने खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। एलिना ने न्यूयॉर्क में दूसरे सेमीफाइनल में चौथे दर्जे की कोको गोफ को 3-6, 6-4 और 6-4 से हराकर तीसरे ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए जगह बनाई। मर्दों के सिंगल्स में सरकर्दा खिलाड़ी जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला पहले सेमीफाइनल में आज देर रात एक गैर मारूफ खिलाड़ी करेन कचानोफ से होगा और सेमीफाइनल में 8वें दर्जे के बेन शेल्टन से 11वें दर्जे के फ्रांसीसी तियाफो के साथ खेलेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार और। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी भलाई से मुतालिक उमंगों के साथ मुस्बत मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर की है, जैसा कि आलमी रहनुमा कल से शुरू होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए नई दिल्ली में यकजा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेजश्कियान के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। कौमी राजधानी में ब्रिक्स तजारती फोरम का आगाज हो गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स के 20 साल पूरे होने के मौके पर बढ़ती हुई मजबूती पायदार तरक्की और ताउन के लिए कहा है। भारत ने अमेरिका में 9/11 के वहशियाना हमलों के 25 साल पूरे होने के मौके पर दहशतगर्दी से लड़ने के लिए अपने पुख्ता अज़्म को दोहराया है। चीन के शहर मोकी में मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज दोपहर भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: अस आकाशवाणी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। प्रोग्राम फौजी वीरां लई जारी है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमरीकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आरियना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवू ओजुकवू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरू वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई।

0: आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है, साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
2: For BRICS particularly, higher economic activity.
3: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
2: And transparent trade and investment.
0: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
3: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
4: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
2: Take to the world as a trusted partner.
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं

0: बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
1: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अस आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 2:30 ने हुन पेश है रंगली धरती प्रोग्राम। आई दे इस प्रोग्राम च तुसी मोहम्मद सदीक की आवाज़ च लोक गीत सुनोगे। पहला सुनते हैं मिर्जा।

नगमोती देख गया होण नगमोती पाड़ के नाथ रक्षा देख गया होण नगमोती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी दे सारे रूपां दे खिलाफ भारत दा संकल्प अडोल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि आत्मनिर्भरता अते संकटां तों उभरन दी योग्यता अज हर देश दी आर्थिक रणनीति लई महत्वपूर्ण बन गई है। केंद्रीय समाजिक न्याय अते शक्तिकरण राज मंत्री रामदास अठावले अज पंजाब दे एक दिन दौरे ते ने। ओ जलंधर दे डेरा सचखंड भल्ला च नतमस्तक होए। पंजाब दे राजपाल अते यूटी चंडीगढ़ दे प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने खेड समग्री मुहैया करवाउण अते प्रतिभाशाली नौजवान खिडारियां नूं समर्थ बनाउण लई कैंपीटेंट फाउंडेशन वलों किते जा रहे जतना दी शलांघा कीती। श्री गुरु रविदास जी दे 650वें प्रकाश पुरब दे संबंध विच पंजाब सरकार वल्लों सूबे विच करवाए जा रहे समागम दी लड़ी तहत कल देर शाम पटियाला तों जलंधर दे करतारपुर विच 500 ड्रोनां दा शानदार शो करवाया गया। औरतां दी आर्थिक आजादी अते समाजिक मजबूतीकरण दे उद्देश नाल पंजाब राज देहाती आजीविका मिशन तहत मानसा दे बाल भवन विच मामा धीआं दी हट्टी तहत खास मंडी लगाई गई। बच्चियां गर्भवती औरतां अते दुध पिआउंदियां मावां दी सेहत लई चलाई पोषण मुहिम जारी है। जूनियर एशिया कप हाकी च मर्दां दा सैमीफाइनल विच अज भारत दा मलेशिया नाल मुकाबला होवेगा। मलेशिया विच करवाए गए अंतरराष्ट्रीय कराटे मुकाबले विच बटाला दे 9 साल दे बच्चे युवान ने कांसी दा तकमा जीत के पूरे पंजाब दा नां रोशन किता है। ए सन हुण तक दे मुख समाचार। समा हो रहा तुहाडा पसंदा प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां दा। तुहाडा दिलों स्वागत है अजिहे प्रोग्राम च जिथे हर चिट्ठी अपने नाल एक एहसास लेके आउंदी है, हर लफ्ज विच किसी दी याद वसदी है ते हर सुनेहे विच प्यार दी मिठास महसूस हुंदी है। अज दी इस सोहनी शाम नूं आओ मिल के पढ़िए कुछ अजिहियां चिट्ठियां जिन्हां विच होवेगा प्यार, यादां, अपनापन ते दिल दीआं अनकहियां गल्लां। इस मिठे जिहे प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां इस मिठे जिहे गीत नाल, हरभजन मान ते रानी रणदीप दी आवाज़ विच। आओ सुनदे हां गीत।

जी में 343.6 मीटर, 72 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम, 804 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़, ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 4 बज रहे ने। हुण साडी अज दी दूजी सभा दे प्रोग्राम शुरू हुंदे ने। सभा दे शुरू च हुण तुसी सुणोगे मुख खबरां।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दहशतगर्दी के सारे रूपों खिलाफ भारत का संकल्प अडोल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आत्मनिर्भरता अते संकटा तो उभरन की योग्यता आज हर देश की आर्थिक रणनीति लई महत्वपूर्ण बन गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अते शक्तिकरण राज मंत्री रामदास अठावले आज पंजाब के एक दिन दौरे ते ने। जलंधर के डेरा सचखंड पल्ला च नतमस्तक होए। पंजाब के राज्यपाल अते यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने खेड समग्री मुहैया करवाउण अते प्रतिभाशाली नौजवान खिडारियों नूं समर्थ बनाउण लई कंपीटेंट फाउंडेशन वलों कीते जा रहे यत्नां की सलाघा की। श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पुरब के संबंध में पंजाब सरकार वालों सूबे में करवाए जा रहे समागमां की लड़ी तहत कल देर शाम पटियाला ते जलंधर ते करतारपुर में 500 ड्रोना का शानदार शो करवाया गया। औरतों की आर्थिक आजादी अते समाजिक मजबूतीकरण के उद्देश दे नाल पंजाब राज देहाती आजीविका मिशन तहत मानसा के बाल भवन मावां तियां दी हट्टी तहत खास मंडी लगाई गई। बच्चियां गर्भवती

उस्ताद हंसराज हंस की आवाज़ चो हुण तुसीं सुन रहे सी सूफियाना कलाम। असीं आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। इस वेले शाम के 4:30 बज रहे ने। आ हुण सरवण करते हाँ श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सिद्धा प्रसारण।

समस्त धार्मिक ग्रंथानुसार सृष्टि नु साजन वाला अकाल पुरख सर्वोच्च शक्ति अते सर्वोच्च हस्ती है, जिसका अंत नहीं पाया जा सकता। वड्डे वड्डे ऋषि मुनि देवते भी उसका अंत नहीं पा सके। उसदियां वड्याइयां वड्डियां ने, उसकी कथा अकथ है, उसका जस गायन ही नहीं किया जा सकता। उसकी महिमा बयान तो परे है। मनुख अल्पमत्ता धारणी है, वो असीम प्रभु दे

विस्तार नूं की बयान कर सकता है। प्रथम गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी बिलावल राग विच उचारे शब्द विच उस वड्डे सुल्तान दी उपमा करन दी असमर्था जाहिर करदे ने। कहे प्रभु, तेरी उपमा करके मैं तेरी कोई सिफत नहीं कर रहा। इता इंज है कि जिवें तू बादशाह है ते मैं तैनू मियां आख रहा हाँ, ए वी मेरी समर्था विच नहीं है। हे प्रभु, जिन्ना को तू बल दिन्ना है मैं उससे सोजी नाल तेरे गुण गाउण दी कोशिश कर लैना हाँ। मेरे पासों मूरख कोलों तेरे गुण बयान नहीं हो सकते। हे प्रभु, तू आप ही मैनू सोजी दे कि मैं तेरी सिफत सलाह दी बरकत सदका तेरी रजा विच टिक सकां। ए जो कुछ वापरिया है सब तेरी माया है, तेरी ही दयानतदारी है। हे प्रभु, मैं ज्ञानहीन हाँ, तेरा अंत नहीं जान सकिया। तेरी की सिफत आखा उते अकथ है, मैनू सोझी नहीं है। तेरा स्वरूप बयान तो परे है, जितनी तू बुद्धि दित्ती है उन्नी ही मैं उस्तत कर सकिया हाँ। तेरा दास भक्ति तो सखना है, फिर भी प्रभु तू मेरा खसम है। तू ही शरण आए दी सहायता कर सकता है। तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कवन वडाई, जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहण ना जाई। इस शब्द का गायन किया बीबी जसपिंदर नरूला ते उन्हां दे साथियां ने।

0: तू सुल्तान कहां हो मिया, तेरी कवन बड़ाई, जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहन ना जाई। इस शब्द का गायन किया सी बीबी जसपिंदर नरूला ते उन्होंने रागी जत्थे ने। अकाल पुरख सबना कला समरथ है, सर्ब सुखां दा दाता है, जो उसनू सेवदे हन उन्हां दे लई उही आसरा है। ए ज्ञान सच्चा गुरु जे अरदास सुन के कृपा करदा है, ता ही इस मस्त कारज रास हुंदे ने। पैरो राग विचले शब्द विच पंचम गुरु फरमाउंदे ने कि जिन्हां ने समरथ प्रभु नू मन अंतर विच त्याया है, उन्हां दे सबे पै दूर हो जांदे हन। उसका अटल हुक्म सारी सृष्टि उपर आयत है, ते सब कुछ उसकी रजा अनुसार हो रहा है। परमेश्वर उपमा रहत है, ते सच्चा गुरु उसे दा ही रूप है, जिसने इस ब्रह्म ज्ञान नू माणिया है। उना दे अंदर ही प्रभु दा वासा है, ऐसे रोशन हिरदिया विच ही पार ब्रह्म दा वासा हुंदा है। ऐसे गुरदेव नू सदा नमन है, उस तो सदा बलिहारे ते उसते चरण शरण दी लोचा रखदे हुए नाम जल ग्रहण करके जीना ही सदीवी जीवन है। सुनदिया एडवोकेट किरपाल सिंह होरां पासों वार्ता, सब ते वड समरथ गुरदेव।
1: ए पावन पंक्ति पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज बाणी दे पुंज वड पर उपकारी सिख धर्म दे पहले शहीद बाणी के बोहित पंजवें गुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा उच्चारण कीती पावन बाणी दे राग भैरों विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1152 विखे सुशोभित है। इस संसार विच मनुख हर वेले किसे न किसे समर्थ दा आसरा लभदा रहिंदा है। कोई ताकतवर अधिकारी नूं समर्थ मंनदा है, कोई किसे धनवान नूं, कोई किसे राजनीतिक नेता नूं, अते कोई अपने संबंधी जां विशेष मित्र दा आसरा तकदा है। पर गुरु साहब दी उक्त बाणी सानू साफ अते स्पष्ट दसदी है कि असल समर्थ तां गुरदेव ही पिता परमात्मा हन, क्योंकि अगलियां पंक्तियां इस गल नूं होर स्पष्ट करदियां हन, जिवें कि सब ते वड समर्थ गुरदेव

अनजान जीव हाँ, पाप कर्म करके माया ही जोड़दा रहा हाँ, जड़ी ना किते टिकी है ते ना ही मैनू टिकन दिंदी है। हे सारिया ताकतां दे स्वामी, मेरी बेनती है कि मैनू शरण विच रख के मेरी लाज रखो। तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोरी राम, पालै अकिरत कना, पूरन दृष्ट तेरी राम। सरवण करदे हां भाई बलबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया

हुने तुसें सरवन कर रहे सी साडा रोज़ाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। असी अपने सुनन वालियां नूं दस दईए कि रात 9:30 बजे तुसीं भाई गुरमीत सिंह शांत अते साथियां तो निर्धारित रागां विच शब्द गायन दा सरवन कर सकते हो। मेरे वेब 343.6 मीटर या 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साडी स्टूडियो दी कड़ी मुताबक इस वेले शाम दे 6 बज रहे ने। हुण तो थोड़ी देर बाद तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो हिंदी विच समाचार सुनोगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और साझेदार देशों के 2000 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स व्यापार मंच है।
1: मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द वर्ल्ड।
2: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है।

0: दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीपटेक स्टार्टअप्स और उद्यम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਭ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। समाजिक न्याय ते अधिकारां बारे केंद्रीय राज मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि उन्हां दी पार्टी पंजाब अंदर अकाली भाजपा गठजोड़ नाल रल के चोणां लड़न लई तैयार है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों नशियां दे खात्मे लई राजव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रावां 18 सितंबर तो। पंजाब सरकार वालों पट्टी दर्ज जाता दे विद्यार्थियों नूं वड्डी राहत वजों अकादमिक सैशन 2025-26 लई डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल नूं 17 सितंबर तक दोबारा खोल दिता गया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना तहत सूबे विच करीब 2 लाख होर कार्ड जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद। 31 लाख कार्ड पहला ही जिले विच उपलब्ध। जूनियर एशिया कप हॉकी विच भारत की मर्दा की टीम पहले सैमीफाइनल विच मलेशिया नूं 3-1 नाल हरा के फाइनल विच पहुंची। हुण खबरां विस्थार नाल। समाजिक न्याय ते अधिकारां बारे केंद्रीय राज मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि पंजाब अंदर अकाली भाजपा गठजोड़ होना चाहिए अते उन्हां दी पार्टी दोवें धिरां नाल रल के चोणां लड़न लई तैयार है। श्री अठावले ने अज लुधियाणा विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं कहा कि आउंदियां पंजाब विधानसभा चोणां च भारतीय जनता पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल दोवां नूं हथ मिला लैणा चाहिए है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इन दोवां पार्टियां नूं हमायत देगी। उन्होंने कहा कि सूबे अंदर अकाली भाजपा गठजोड़ विच शामिल होकर पार्टी अहम भूमिका निभा सकती है।
3: आने वाले विधानसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि बीजेपी और अकाली दल एक साथ आना चाहिए और रिपब्लिकन पार्टी को भी साथ में रखना चाहिए। कुछ सीटें रिपब्लिकन पार्टी को मिलनी चाहिए और इस पार्टी का साथ अगर बीजेपी अकाली को मिलता है तो सत्ता लाने में बहुत ही सफलता मिलेगी और

0: आम आदमी पार्टी की तरफ से, भगवान मान जी की तरफ से यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिला है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बड़ी गंभीर।
1: उन्होंने लुधियाना विच बीते दिनी संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर दे बुत दी बेअदबी किते जाण दी घटना दी वी निखेधी करदिआं दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई दी मांग कीती है। पहला मंत्री ने लुधियाना जाण तों पहलां जलंधर च डेरा सचखंड बल्लां विखे पदम श्री संत निरंजन दास जी महाराज नाल मुलाकात कीती। उन्होंने कहा,
0: आज संत निरंजन दास महाराज जी को मिलने के लिए मैं इधर आया था। गुरुद्वारा पूरे पंजाब में बहुत बड़ा फेमस गुरुद्वारा है, एक बहुत हमारे दलितों का बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान है, तो इनका काम बहुत बड़ा है। संत रविदास जी ने मतलब जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने समाज में एकता पैदा करने के लिए काम किया था और उसी को आगे बढ़ाने का काम यहाँ संत निरंजन दास महाराज जी कर रहे हैं और हमें उनके बारे में बहुत बड़ा गर्व है।
1: भारतीय जनता पार्टी पंजाब भाजपा का नारा नशा मुकाना सारा दे नारे नाल राजव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रावां शुरू कर रही है। 18 सितंबर तो 4 पड़ावां विच शुरू हो रही ए यात्रा 13 दिनां तक जारी रहेगी अते नशियां विरुद्ध लड़ाई नूं इक विशाल लोक लहर विच बदलण लई सारे 117 विधानसभा हलकियां दे लोकां नूं इकजुट करेगी। ए ऐलान भाजपा दे सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लो ने अज चंडीगढ़ विच इक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कीता। वेरवा साडे पत्रकार तों।
2: केवल सिंह ढिल्लो ने कहा कि पार्टी दे राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन 18 सितंबर नूं पठानकोट जिले दे एकता स्थल माधोपुर तों चारां विचों पहली यात्रा नूं झंडी दिखा के रवाना करनगे। ए चारों यात्रावां 30 सितंबर नूं जलंधर विखे समापत होणगीआं।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब विच नशा खत्म करन दा संकल्प लिया। असी पंजाब विच नशा विरुद्ध यात्रा शुरू करन जा रहे हां। साडा संकल्प पंजाब नूं नशा मुक्त करना है। भारतीय जनता पार्टी नशा विरुद्ध लड़ाई नूं इक व्यापक जनतक अंदोलन बनाउण जा रही है। रूट जिहड़े आ निर्धारित कीते गए आ पंजाब भर विच लगभग 4000 किलोमीटर दा सफर तय करेगी यह नशे विरुद्ध यात्रा।
2: श्री ढिल्लो ने कहा कि यह यात्रा अज पंजाब दे सामने तीन वड्डियां चुनौतियां ते केंद्रित होवेगी जिन्हां विच वध रहे नशियां दे खतरे विगड़दी कानून व्यवस्था अते शासन दे हर पद्धर ते उपर तों हेठां तक भ्रिष्टाचार शामिल ने। ढिल्लो ने कहा कि यह सिर्फ नशा विरोधी जागरूकता यात्रा नहीं है सगो नशियां वल्लों पंजाबीयत साडे सभ्याचार कदरां कीमतां हिम्मत अते गुरुआं दी धरती दी मानमती पछाण नूं बरकरार रखण लई इन्हां गंभीर खतरियां दा सामना करन दी कोशिश है। पार्टी दे राष्ट्रीय उप प्रधान मनप्रीत बादल ने कहा कि नशियां दा खतरा न सिर्फ एक मनुखी दुखान ते सगो राष्ट्रीय सुरक्षा लई भी चिंता दा विषय है।
4: नशा जिहड़ा है ये सिर्फ एक ह्यूमन ट्रैजेडी नहीं है बल्कि इंडिया दी सिक्योरिटी दी एक कंसर्न है। ये जिहड़ा नशा है ये इंडिया दी जीडीपी ग्रोथ दी कंसर्न है। इहदे नाल तां साडा समाज ही खोखला हो जाऊगा। तुसीं यकीन करियो कि जिहड़ी सरकार कश्मीर दे विच अतवाद खत्म कर सकती है, जिहड़ी सरकार हिंदुस्तान दे विच नक्सल वाद खत्म कर सकती है, जे उन्हें पंजाब च मौका मिलिया तां की तुसीं सोचदे हो कि ये जिहड़े नशे दे तस्कर है इन्हां नूं नहीं खत्म कर सकदी।
2: राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
1: पंजाब दे कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने युद्ध नशे विरुद्ध नूं पंजाब विच नशे विरुद्ध एक फैसला कुंजंग करार दिता है, जिस दौरान 551 दिनां दी मुहिम दौरान 76,000 तों वध गिरफ्तारियां कीतियां गईयां ने। पंजाब पुलिस अकैडमी फलौर विखे युद्ध नशे विरुद्ध टीम दे राजभर तों इकट्ठे होए 500 तों वध मैंबरां नूं संबोधन करदिआं श्री अरोड़ा ने कहा कि इस मुहिम ने सूबे विच नशे दे नैटवर्क दी रीढ़ तोड़ के नशे दे खतरे नाल निजिठण विच शानदार काम कीता है। मंत्री ने कहा कि युद्ध नशे विरुद्ध हुण अपने आखिरी पड़ाव विच दाखल हो रहा है। अगले महीने दौरान 500 तों वध टीम मैंबर हर पिंड अते वार्ड दा दौरा करके वसनीकां नाल गल्लबात करनगे अते नशियां दे खतरे विरुद्ध लड़ाई विच होई प्रगति बारे चर्चा करनगे। ए खबरां तुसी आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। पट्टीदार जाति दे विद्यार्थियों नूं वड्डी राहत दिंदिआं सूबे दे समाजिक न्याय अधिकारिता ते घट गिणती मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने ऐलान कीता है कि अकादमिक सैशन 2025-26 लई डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल नूं 17 सितंबर तक दुबारा खोल दिता गया है। इह वख-वख पद्धरां ते बकाया पए नवें ते नवियाउण दे स्कॉलरशिप केसां दी तसदीक मुकम्मल करन दा इक आखरी मौका है। कैबिनेट मंत्री ने विद्यार्थियों विद्यक अदारियां मंजूरी देण वालियां अथॉरिटियां ते संबंधित विभागां नूं अपील कीती कि ओ इस नवी समा सीमा नूं पूरी गंभीरता नाल लैण अते दित्ते समें दे अंदर अंदर सारियां कारवाईयां पूरियां करन।

0: हाँ जी तेजा सिंह जी
1: जी सुनिया गाउण जी
0: सुनिया बिल्कुल सुनिया जी।
1: अच्छा शिंगारा सिंह जी गल हैगी इदां पे अपने कोल ना कृषि विज्ञान केंद्र मोगा तो डॉक्टर मनप्रीत सिंह हुणी आए सीगे।
0: अच्छा जी
1: उन्होंने हाड़ी दीयां तेल बीज फसलां ते गल्लां बातां कीतियां अपने नाल आपां सुणदे आं
0: जी। सुनाओ जी फिर
2: अज दे इस प्रोग्राम विच किसान वीर अते किसान बीबियां दा स्वागत है जी। किसान वीरों तेल बीज फसलां साडी रोजाना जिंदगी विच बहुत महत्व रखदियां हन चाहे ये खाने वाले तेल के रूप में हो चाहे ये खल के रूप में हो जी। तो क्यों ना किसान वीरों आप इन्हां फसलों की काश्त खुद करिए क्योंकि इस नाल सानू सस्ता अते उच्च गुणवत्ता का तेल मिलेगा जिस नाल साडी सेहत भी सही रहेगी साडा खर्चा भी घट होएगा अते सरकार उपर बोझ भी घटेगा क्योंकि साडी लोड़ां की पूर्ति करन लई सरकार नूं तेल बाहरों मंगाउणा पैंदा है जी। इस दे संबंध विच असीं अज गल करांगे हाड़ी रुत्त दीआं तेल बीज फसलां जिवें कि सरों अलसी सूरजमुखी की काश्त के ढंगा बारे। किसान वीरों अगर आप सरों की गल करिए इस विच राया गोभी सरों तोरिया अफ्रीकन सरों अते तारामीरा जिहियां फसलां शामिल हैं जी। इन्हां विचों गोभी सरों अते अफ्रीकन सरों की काश्त लगभग हर किस्म दीआं जमीनां विच कीती जा सकती है। तोरिया अते राया नूं किसान वीरों चंगे जल निकास वालियां हल्कियां मैरा तो दरमियानियां भारियां जमीनां विच बीज सकदे हां जी। तारामीरा की गल करिए इस लई रेतलियां अते मैरा रेतलियां जमीनां माफक होंदियां हन। अगर किस्मां की गल करिए किसान वीरों पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वल्लों राया दीआं किस्मां जिवें कि पंजाब कनोला एक पी एच आर 127 आर सी एच एक की सिफारिश की गई है जिन्हों का झाड़ 8.5 तो 9.5 क्विंटल प्रति एकड़ है अते यह 140 तो 152 दिनों में पक जांदियां हन। गोभी सरों दीआं किस्मां जिवें कि PGSH 2155 PGSH 1707 GSC 7 आदि हैं जिन्हों का झाड़ 8.8 तो 9.7 क्विंटल प्रति एकड़ है अते यह 154 तो 162 दिनों में पक जांदियां हन। इस दे नाल ही तोरी की गल करिए इस दीआं दो किस्मां TL 17 अते TL 15 की सिफारिश की

0: हाँ जी शिंगारा सिंह जी, गल है कि इदा भी मेरे को जिहड़ा खत बैठा है
1: जी,
0: आके मेरे आलू झाकी जांदा है, वो आया जमशेदपुर तो,
1: एक कबूतर लेके आया।
0: हाँ कबूतर
1: आया,
0: तो आपां हाले कबूतरां च फसे आ गए। ये आया जी जमशेदपुर तो
1: जी,
0: हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया ते पप्पी भाटिया
1: जी।
0: इहदे नाल नाल एक खत आया जी मखू फिरोजपुर तो
1: जी,
0: बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी
1: जी,
0: ते मनीष बजाज।
1: अच्छा जी,
0: ते नाल तीजा खत आया जी गांधी चौक रोपड़ तो, हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक ते मीना विरक, मीका विरक।
1: अच्छा जी, ते सो, अपने को भी खत आया जी, भी नाले पढ़ दी है,
0: नाले पढ़ दियो।
1: दे कनेरा मल्ला पटियाला तो जी, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता, गीतू बत्ता, निहारका ते वंश बत्ता
0: जी।
1: ਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰੱਖੜਾ
0: ਜੀ,
1: ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਤੇ ਪੋਤਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ
0: ਜੀ,
1: ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਜਸਵੀਰ ਰੇਖਾ, ਗਗਨ ਸੋਨੀ, ਸੀਤਾ ਔਰ ਗੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਆ
0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ।
1: ਲਓ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ।

0: हां जी तेजा सिंह जी
1: जी
0: पढ़ो खाते जी।
1: अगला खाते है जी आदर्श नगर मलोड़ तो राज शर्मा, मीना शर्मा, जुगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा,
0: अच्छा जी,
1: शाइना शर्मा ते निवान शर्मा
0: जी।
1: इन्हों का खाता आया जी। तो दूजा खाता आया फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो,
0: अच्छा जी,
1: गुरविंदर सिंह पांधा, इंदरजीत कौर
0: जी,
1: बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा। अगला खाता आया जी नवी आबादी अबोर, ओम प्रकाश सोनी, साहिल सोनी, अमन सोनी, करण सोनी, महेंद्र बिश्नोई,
0: अच्छा जी,
1: ते हरिपुरिया
0: जी।
1: इन्होंने जी गीत की फरमायश की आ,
0: अच्छा जी,
1: ये जो गीत है ये तो आप सुनावे थोड़े को इस गीत बारे कोई है खत।
0: हाँ देखो जी आ जी चाल कला नवा शहर तो जी
1: जी
0: अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा, कुलविंदर कौर बंगा
1: जी,
0: ते अंबा चाल
1: वधिया,
0: ते महस गेट नाभा। उतो खत लिखते ने जी सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी, गुरमन्नत, पंचकूला सैक्टर 9 तो जी आशु चुग, अश्विंदर चुग, गोविंद चुग
1: जी,
0: टोनी दीवान, लव दीवान, ते इन्हां दे बहुत सारे साथी ने जी।
1: बहुत वधिया गल आ, सुनाओ जी गीत।
0: लो जी सुनो जी फिर अपने पसंद का गीत जी।
1: वाह

0: हाँ जी
1: जी
0: ते ए तो बाद जिहड़ा मेरे को खाता है जी वह पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया
1: अच्छा
0: गीता राणी जजोरिया गगनदीप जजोरिया बेबी आरजू जजोरिया
1: जी
0: इन्होंने गीत की फरमायश की आते नाल नाल जी मुक्तसर तो
1: अच्छा जी
0: बब्बू सिंह धीमान बलजिंदर कौर धीमान अच्छा रवनीत ते निशु ते कनेरा महला पटियाला तो मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन बत्ता पलक बत्ता करण बत्ता रितु बत्ता निहारका ते वंश बत्ता
1: जी
0: ते नाल ही हार्दिक
1: अच्छा जी
0: इन्होंने गीत की फरमायश की लो सुनो जी फिर गीत
1: सुनाओ जी फिर

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से

0: हुने तुसी सुन रहे सी देहाती प्रोग्राम। ए प्रोग्राम आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पेश कीता गया। असी अपने सुनन वालियां नूं दस दईए, हुण तो थोड़ी देर बाद ठीक 7:30 बजे तुसी साडे FM रेनबो चैनल 102.7 MHz ते औरतां दे एशिया T20 टूरनामेंट 2026 दे तहत दूजे सैमीफाइनल च श्रीलंका अते पाकिस्तान दीआं टीमां दरमियान दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम विखे खेडे जा रहे मैच दी ऑफ ट्यूब कमेंटरी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तों। इस मैच दा सिद्धा प्रसारण तुसी साडे प्राइमरी चैनल DTH अते DRM तों सुनोगे ठीक 7:40 ते। मैच दौरान साडे इस मीटर तों खबरां आपो अपने समें ते नशर कीतियां जाणगियां। मीडियम वेब 343.6 MHz या 873 KHz ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। शाम दे 7:30 बज रहे ने, हुण तुसी पंजाबी विच खबरां सुनोगे।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच ब्रिक्स व्यापार फोरम नूं संबोधन किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश विश्वव्यापी नवीनता ते हलां दे महत्वपूर्ण केंद्र वजों उभर रहे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज रूसी राष्ट्रपति वलादिमिर पुतिन नाल मुलाकात दौरान वख-वख खेत्रां च दुवल्ले सहयोग की प्रगति का जायजा लिया। कल तो शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लई मंच पूरी तरह तैयार है। विदेशी नेतावां दा नवी दिल्ली पहुंचना जारी है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब च 18 सितंबर तो नशा मुक्त पंजाब यात्रावां शुरू करेगी। मर्दां दे जूनियर एशिया कप हाकी च भारत मलेशिया नूं 3-1 नाल हरा के फाइनल च पहुंच गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश विश्वव्यापी नवीनता ते हलां दे महत्वपूर्ण केंद्र वजों उभर रहे ने। अज शामी नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे ब्रिक्स व्यापार फोरम के आगुआ के सैशन संबोधन करदे उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश अज दुनिया की 50% आबादी विश्व GDP का 40% ते विश्व व्यापार के 25% तो वध दी नुमाइंदगी करदे ने।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% GDP और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन वर्षों में जहां ग्लोबल GDP करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड GDP करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है।
1: उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों में जमीनी पद्धर दी पहलकदमियों तो लैके आधुनिक तकनोलॉजिया तक नवीनता के नवे राह आकार लिया रहे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि आलमी अनिश्चितताओं दरमियान भारत अज विकास और स्थिरता लई विश्वास का समानार्थी है। उन्होंने मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्केल फॉर द वर्ल्ड का सद्दा दिता। समागम नूं ब्रिक्स मैंबर देशों के मुखियों ने भी संबोधन किया। इन्हां विच रूसी राष्ट्रपति वलादिमिर पुतिन, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियां अते दक्षणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा शामिल ने। वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की प्रधानगी हेठ ब्रिक्स ने मैंबर देशों विचकार वधेरे संतुलित व्यापार अते सेवावां ते ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई हेठ भारत यकीनी बनाने लई वचनबद्ध है कि इस सहयोग के लाभ किसाना, महिला उद्यमियों, नौजवान उद्यमियों, सूखम, छोटे ते दरमियाने उद्यमों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री

0: बीजेपी अकाली को मिलता है, सत्ता लाने में बहुत ही सफलता मिलेगी और आम आदमी पार्टी की तरफ से, भगवान मान जी की तरफ से यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिला है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बड़ी गंभीर है।
1: उन्होंने लुधियाना में बीते दिन संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बुत की बेअदबी किए जाने की घटना की भी निखेधी की, दोषियों खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की मांग की। पहला मंत्री ने लुधियाना जाने तो पहला जलंधर च डेरा सचखंड बल्लां विखे पद्म श्री संत निरंजन दास जी महाराज नाल मुलाकात की। भारत मर्दां दे जूनियर एशिया कप हाकी दे फाइनल च पहुंच गया। अज चीन दे मोकी विच खेडे गए पहले सैमीफाइनल विच भारत ने मलेशिया नूं 3-1 नाल हराया। भारतीय कप्तान अनमोलेका ने 2 गोल किए जदोंकि सुखविंदर ने 1 गोल किया। हुण ऐतवार फाइनल च भारत का मुकाबला दक्षणी कोरिया नाल होएगा। दक्षणी कोरिया अज शामी पाकिस्तान नूं 4-1 नाल हरा के फाइनल च पहुंचे है। भारतीय जूनियर महिला टीम कल सैमीफाइनल विच दक्षणी कोरिया खिलाफ खेडेगी। अंत विच चोणवीं खबरां एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच ब्रिक्स व्यापार फोरम नूं संबोधन किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश विश्वव्यापी नवीनता ते हलां दे महत्वपूर्ण केंद्र वजों उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज रूसी राष्ट्रपति वलादिमिर पुतिन नाल मुलाकात दौरान वख-वख खेतरां च दुवल्ले सहयोग की प्रगति का जायजा लिया। कल तो शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लई मंच पूरी तरह तैयार है। विदेशी नेतावां दा नवी दिल्ली पहुंचना जारी है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब च 18 सितंबर तो नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू करेगी। मर्दां दे जूनियर एशिया कप हाकी च भारत मलेशिया नूं 3-1 नाल हरा के फाइनल च पहुंच गया है। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा। साडा अगला बुलेटिन पढ़ के सवेरे 8:30 ते होएगा। नमस्कार।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। आहुन सबरंग प्रोग्राम तहत अख्तर अली अख्तर दी नज़म समात फरमाउंदे आ।
3: हजरात, मैं आज एक नज़म लेके हाजिर हुआ हूँ जिसका उनवान है मेरी माँ मेरा बचपन। मेरी माँ मेरा बचपन मैं पेश कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप महसूस होंगे। मेरे प्यार में अपनी नींदें गवा कर मुझे याद है माँ का लोरी सुनाना। कहाँ खो गया है कहाँ जाके ढूंढूं वो मासूम बचपन का अल्हड़ ज़माना। मिली माँ के आंचल के साए में राहत, मिली माँ के आंचल के साए में राहत कि है माँ की ममता से मुझको मोहब्बत। इसी माँ के कदमों के नीचे है जन्नत, नहीं माँ के एहसान की कोई कीमत। उसी की दुआओं से हासिल है मुझको ये दौलत ये शोहरत ये हवेली ख़जाना। मेरे प्यार में अपनी नींदें गवा कर, मेरे प्यार में अपनी नींदें गवा कर। कलम उंगलियों में पकड़ना सिखाती, कलम उंगलियों में पकड़ना सिखाती, कभी गोद में वो किताबें पढ़ाती, वो परियों की दिलकश कहानी सुनाती, खिलौनों से मेरा घरौंदा सजाती। दशहरा दिवाली हो या ईद का दिन, दशहरा दिवाली या हो ईद का दिन, नहीं भूलती थी वो मेला दिखाना। मेरे प्यार में अपनी नींदें गवा कर मुझे याद है माँ का लोरी सुनाना। और शेर है कि वो सावन की रिमझिम में घर से निकलकर, वो सावन की रिमझिम में घर से निकलकर, वो बारिश में मेरा नहाना मचलकर, गरजते थे बादल जो पहलू बदल कर, कलेजे से माँ के लिपटना उछलकर, बनाकर वो रंगीन कागज़ की कश्ती, बनाकर वो रंगीन कागज़ की कश्ती, मोहल्ले के तालाब में फिर नहाना। मेरे प्यार में अपनी नींदें गंवा कर मुझे याद है माँ का लोरी सुनाना। और शेर है कि कभी चांद तारों को छूने की ज़िद थी, सभी नौबहारों को छूने की ज़िद थी, समंदर

के धारों को छूने की जिद की, कभी कोहसारों को छूने की जिद की, वो सूरज को छूने की मासूम जिद पर मुझे अपने आंचल में माँ का छुपाना, मेरे प्यार में अपनी नींदें गंवा कर मुझे याद है माँ का लोरी सुनाना। और शेर अर्ज करूँगा, आखिरी पद है, वो गुड्डे का सेहरा वो गुड़िया का कंगन, वो गुड्डे का सेहरा वो गुड़िया का कंगन, वो शादी की रस्में वो मेहंदी का चिलमन, वो शादी की रस्में वो मेहंदी वो चिलमन, घरौंदा वो आंगन वो मिट्टी के बर्तन, घरौंदा वो आंगन वो मिट्टी के बर्तन, बरसता था घर में मुसर्रत का सावन, मोहब्बत से यारो मेरी जिद पे माँ का वो गुड़िया के चेहरे से घूंघट हटाना, वो गुड़िया के चेहरे से घूंघट उठाना, मेरे प्यार में अपनी नींदें गवा कर मुझे याद है माँ का लोरी सुनाना, कहाँ खो गया है कहाँ जाके ढूंढूं वो मासूम बचपन का अलहड़ जमाना। सामिन कराम, उर्दू की गज़ल पेश कर रहा हूँ, उम्मीद है पसंद आएगी। तेरी आँखों के

आनंद बख्शी दे बोलां नूं तुसीं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दे संगीत दे विच मोहम्मद रफी दी आवाज़ दे विच आया सावन झूम के फिल्म दे विचों एक गीत सुन रहे सी ते हुण प्रोग्राम दा अगला गीत तुहानूं सुनावांगे नरेंद्र चंचल दी आवाज़ दे विच ते इस गीत नूं लिखिया है इंद्रजीत सिंह तुलसी ते संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दा। दोस्तों कहिंदे आ कि जदों कोई अपने तिखे जां कोड़े बोलां दे नाल किसी दा दिल दुखांदा है तां रिश्तियां दे विच अजिही खटास पैदा कर दिंदा है जिस नूं दूर करना मुश्किल हो जांदा है। जीवन दे विच अक्सर कहा जांदा है कि बोलण लगे हमेशा सलीका ते नरमी रखनी चाहीदी है क्योंकि माड़ा बोल ना बोलीए करतारों डरीए ते साडे बहुत सारे सूफी संतां ने भी अपनी बाणी दे विच लिखिया है हमेशा मिठा बोलना चाहीदा है क्योंकि हर हिरदे दे विच रब वसदा है। आओ हुण बॉबी फिल्म दे विचों नरेंद्र चंचल दी आवाज़ दे विच प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां।

दोस्तो रब ने सानू इस धरती ते भेजिया है ते बोलन दी शक्ति दित्ती है यानी साडी वाणी पर इस वाणी दी वरतो किवें करनी है साडे हाथ विच है। किसी ने बहुत कमाल दी गल लिखी है कि वाणी नू वीणा बनाओ बाण ना बनाओ क्योंकि ये वाणी वीणा बनेगी तो जिंदगी विच संगीत होवेगा पर जे ए बाण बन गई तो जिंदगी विच महाभारत हो जाएगा। जो साड़ी जुबान वीणा बनती है तो असी प्यार दे नाल बोलते हाँ दुनिया की हर चीज खूबसूरत लगन लग पैंदी है। जिवें फिल्म अनाड़ी का जाते जाते हुण आखिरी गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं जो सानू याद दिवांदा है कि जिंदगी किन्नी हसीन है जदों असी किसी दूजियां दी चेहरे के उत्ते मुस्कुराहट लैके आते हैं। शैलेंद्र के बोलों शंकर जयकिशन के संगीत दे विच मुकेश की आवाज़ के विच जाते जाते प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनते हैं अनाड़ी फिल्म के विचों।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ 9:15 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, 9 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 9:15 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਪੋਟਲਾਈਟ।
1: संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई।
2: श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
3: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
3: हम रोड, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई

0: नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र

0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
4: आज IMF ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। IMF ने भारत की इकोनॉमी के रेजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। चार चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरै में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरै तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप

महत्वपूर्ण केंद्र वजो उभर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल मुलाकात दौरान खेतरां च दुपल्ले सहयोग की प्रगति का जायजा लिया। कल शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लई मंच पूरी तरह तैयार है। विदेशी नेतावां पहुंचना जारी है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब च 18 सितंबर तो नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू करेगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने युद्ध नशिया विरुद्ध नूं पंजाब विच नशिया विरुद्ध फैसलाकुन जंग करार दिता है। जिस दौरान 551 दिनों की मुहिम दौरान 76,000 तो वध कीतियां गईयां। समाजिक न्याय ते अधिकारां बारे केंद्रीय राज मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि पंजाब अकाली भाजपा गठजोड़ होना चाहिए है अते उन्हां दी पार्टी दोवां धिरां दे नाल रल के चोणां लड़न लई तैयार है। पंजाब सरकार वल्लों पट्टी दर्ज जातां दे विद्यार्थियों नूं वड्डी राहत वजो अकादमिक सैशन लई डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल नूं 17 सितंबर तक दुबारा खोल दिता गया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना तहत करीब 2 लाख होर कार्ड जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद। पहला ही जिलों में उपलब्ध। मर्दा दे यूनियर एशिया कप हॉकी च भारत मलेशिया नूं 3-1 नाल हरा के फाइनल विच पहुंचया है। ए सी हुण तक दीआं मुख खबरां। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। हुण पेशे प्रोग्राम सुरशनकार। सुरशनकार प्रोग्राम दे विच सब तो पहला सुनदे हां गुरदास मान दी आवाज़ दे विच गाया गीत।

कई कई बार चढ़ी कोठे ते ते मैं उतरी कई कई बारी आजा सजना ना जा सजना हो तू जितिया ते मैं

0: दीविना सबका दीविना संगया करो रंग प्यार वालिया करो।
1: आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दे विच अगला गीत सुरिंदर कौर ते आसा सिंह मस्ताना दिया आवाजां दे विच गाया।
2: लो जी व्याह सजनो इस गीत नूं जरा ध्यान नाल सुनो।

0: आशा भोसले तो बाद आओ हुण प्रोग्राम दे विच अगला गीत सुनदे आ। रफियोजी फिल्म दे विचों लिया, इस नूं आवाज़ां दित्तियां ने उदित नारायण ते साथियां ने।
1: क्या देख रहे हो?
2: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
1: तो चांद को ही देखिए ना।
2: मगर वो सांस नहीं लेता।

रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। जी हां दोस्तों, रात की है। रात अपने आप ते विच की हुंदी है। रात यानी खामोशी, रात यानी हनेरा। पर जदों असी उसी काली बोली रात की हथेली ते चांद जगमगाउण दी गल करदे हां उस चन्न दे, तां उह रात डरौनी नहीं बल्कि बेहद रोमांटिक ते खूबसूरत बन जांदी है। चंद दियां नरम किरणां रात दे हनेरे नूं इक अद्भुत सकून दे विच बदल दिंदियां ने, ते सकून दा गीतां नूं सुन के भी मिलदा है। ते प्रोग्राम दे विच नगला गीत इश्क फिल्म दे विच लिया, उदित नारायण ते विवा शर्मा दियां आवाज़ां दे विच गाया।

इश्क की दुनिया है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दिल मिल भी सकता है और खो भी सकता है। जिसे तुम चाहते हो किसी और का भी हो सकता है। तुम समझो इबादत, वो गुनाह हो भी सकता है। बेपना मोहब्बत का मामूली हाल हो भी सकता है। इश्क की दुनिया है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आओ हुण प्रोग्राम दे विच वधदे आं अगले गीत दे वल। लता मंगेशकर, किशोर कुमार दियां आवाजां दे विच जूली फिल्म दे विचों लिया प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आं।

मुझे खबर है तेरे दिल का हाल क्या है, तेरी आंखों में छुपा सवाल क्या है। तू मुस्कुराकर दर्द छुपा लेती है, मुझे मालूम तेरे भीतर का मलाल क्या है। बस इतना बता दे फिर भी क्यों चुप है, जब जानती है मेरा तुझसे सवाल क्या है। सरगम प्रोग्राम दे भी चाओ हुन अगला गीत अलका याग्निक कुमार सानू उदित नारायण दिया आवाजा दे विच गाया दिल का रिश्ता फिल्म दे विच सुनदे आं।

हाल क्या है, बस इतना बता दे, फिर भी क्यों चुप है, जब जानती है मेरा तुझसे सवाल क्या है। सरगम प्रोग्राम दे विच आओ हुण अगला गीत अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण दिया आवाजां दे विच गाया, दिल का रिश्ता फिल्म दे विचों सुनदे आं।

दूरियां तो बस रास्तों में होती है, दिल से जुड़े लोग कहां दूर होते हैं। बातें भले ही कम हो जाएं उनसे, मगर यादों में वो हमेशा मौजूद होते हैं। कुछ लोग जिंदगी में किस्मत से नहीं, दुआओं से मिलते हैं। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, कुछ रिश्ते कभी नहीं बदलते हैं। तो अज के इस प्रोग्राम के अखीर के विच हुण सुनदे आं सौतन फिल्म दे विचों लिया लता मंगेशकर की आवाज़ के विच गाया अज के इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

ना कुछ उलझा है ना कुछ सुलझाने को है, जिंदगी है एक गीत जो मिला गाने को है, चंद घड़ियों का सफर है जो बिताने को है, कुछ याद रखना है कुछ भूल जाने को है, खुद चलने को है दूसरों को चलाने को है, गहरे समंदर में अपनी आस बचाने को है, कुछ सीखने को है कुछ सिखाने को है, आग बुझाने को और जोत चलाने को है। सौतन फिल्म दे विच ले इस गीते नाल ही अज दा सरगम प्रोग्राम मैनू पूजा हांडा नू इत्थे ही खत्म करन दी इजाजत दे दिओ। फिर मौका मिलेगा फिर मिलांगे। उदों तक लई तुसी सारिआं ने रखना है अपना ख्याल। हसते रहो वसते रहो, जिंदगी नू मानदे रहो। जिंदगी जिंदाबाद।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 11:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। 11:10 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਗਾਤ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री

0: मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बिल्कुल चीतल पहला जानी रहा एक कठोर हो गया गीते जगह सुरेंद्र सरताज साहब की आवाज से प्रोग्राम चल रहे जिस सुगा ते मैं थोड़े दोस्तों ने इस वेले थोड़े नाल पढ़े हुए तो नंबर है जी साडा 0181 143 171 यानी कि 0812342171 सो यही नंबर डील करके अगले दोस्त पहुंच चुके हैं जी। हेलो
1: हेलो सत श्री अकाल सर जी।
0: सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुगात विच।
1: मौसम
0: ठंडा हो जाना कुछ हफ्ते दस दिन बाद मौसम ठंडा हो जाना बस थोड़े समय हो रहा
1: So,
0: फरमाइश लेके आए। बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश तो गीत लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।

तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरवाना, हर नानक साच वखाना। इस शब्द गायन की तासी पाई निर्मल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने तो पहला दे चार गुरु साहबान तिना दी बाणी अपने वलों उचारी हुई बाणी 15 पक्तां 11 अर्षी पट्टां अते गुरसिखां दी बाणी नूं संग्रह करके संकलित अते संपादन कीता ते पोथी दा रूप प्रदान कीता। आप जी ने पादरों सुदी एकम संवत 1661 विक्रमी नूं सचखंड श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर विखे पहली वार आद ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी नूं पहले ग्रंथी नियुक्त करके उन्हां दे कर कमलां द्वारा

पावन ग्रंथ साहिब जी विच पूर्ण ब्रह्म ज्ञान मौजूद है। बस अकाल पुरख दी कृपा सदका साध पुरश उस अकाल पुरख प्रभु दे गुण गायन करदे ने। पोथी परमेसर का थान साध संग गावै गुण गोबिंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान। सरवण करदे आं भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द।

मिठी परमेसर का थान, साध संग गावे गुण गोबिंद, पूरन ब्रह्म ज्ञान। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

कर कबीराय नाथ हो तुम ही खेवई खेवैया। बहुरी दया को डांड घाट पर आवे नैया। ओ झिझर।

0: श्री सरोंकार एसी प्रोग्राम भक्ति संगीत डेटा दी पंजाबी प्रसारण सेवा दा ए चलंतर केंद्र है ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी पंजाब। इस वेले सवेर दे 4 बज चुके ने ते आओ हुण असीं तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर ले चलदे हां जित्थे तुसी सरोंकार करोगे शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण।
1: नचन कुदर मन का चाओ नानक जिन मन भाओ।

0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ दसन हार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप वेखा कूड़ कूड़े में हल का विसरिया करतार किस नाल की चाय दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ दो बैपूर नानक वखाने बेनती तुझ बाज कूड़ कूड़ महला पहला
1: सच का प्रजानिया जय हृदय सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तुहे सच का प्रजानिया जा सच परे प्यार नौ सुमंगे सिया ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानी है जब जुक्त जाने जियो करत काया साध कैच देकर ता भी

0: तुर कर्म जिना को तुद पाया तात नेक समते आया इना जनता के बस कित मैं तुद वेकी जग तु पाया एक नानों को मैं लै कब तुद को भाया गुर कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया सहजे सत समाया
1: जो पावे त्यो रात ले हम शरण कब आए राम राज हम तूने बिगावे।

0: योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत सर शब्दं एक शब्दं जे को जान पेयो नानक ताता दास है सोई नंजन दियो महला दूजा
1: हे कृष्णन सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बस दिवस जे को जान पेयो नानक ताता दास है सोई निरंजन दियो महला पहला
0: कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पूरी

0: गुरु गुरु सेवे अलख गात जाकी श्री रामदास तारन तारन। गुरु समरथ गह करिया तुम बुद्ध समत सुमारन को हुन धर्म तुझा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन को मथुरा जन जान कही जी साथ सौर कछुना विचारन को हर नाम बोहत बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को नाम नावन नाम रस खान और भोजन नाम रस सदा चाहे मुखमिष्ट बाणी तन सतगुरु सेव जिस पसागत रम जानी कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास सत्यथ जन्म का लुचर गुर परस्यो अमर प्रगा
1: जब लो नहीं भाग लिलार उदय तब लो परमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुद्र में बूढ़ते कभू मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपे जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जेत रूप हर आप गुरु नानक हायो ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमरत शतर गुर्राम दियो गुर्राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत वैन।

0: मूरत पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन तिखो नैन।
1: गुरु गुरु गुरु करमन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाद सब जिसकेरे हुन दुख नाश सुखदायक सुर जो धरत ध्यान पसत नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देख तक जाए परे रे जो हर बुद्ध सिद्ध सिद्धाहत गुरु गुरु गुरु कर मन मेरे
2: काची देहे मोह फुन बांधी साठ कठोर कुचेर को ज्ञानी तावत परमत रहन नहीं पावता पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जौबन रूप माया मद माता विचरत विकल बडो अभिमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी ही महे हितानी बलवंत शप करत उपावा पीखत सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुचना सता आयु शरण दीन के दानी। नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत कीनी विरखाई गुर अमरदास की एकाथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई सोडी श्रिष्ट सकल तारण को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई।
3: हाँ बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा दो कवन सेवा सरो एक मुख रसना रस हो जुग जोर कर फुन मन बच करम जान अनत दूजा नामान नाम सो अपार सर दिनो गुर रिद तर नल कव पारस परस कच कंचना हो चंदना सोबास जा सिमरत अंतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे। जी हाँ बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर
4: सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुर्मत मल्लासी सतगुर चरण कवल रिद धारण गुर अर्जुन गुण सहज विचारण गुरु रामदास कर कियो परगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो भगत जोग को जैत वार हर जनक उपायो शब्द गुरु पर कास्यो शब्द गुरु पर कास्यो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जुन कर गुर रामदास भगत उतर आयो।
5: गुरु मुख देख गुरु सुख पायो कुती जो प्यास पीयूष पीवन की वंचक सिद्ध को बेद मिलायो पूरन पो मन ठोर बसो रस बासन सोजो धन दस्तायो गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम जलर तीर भी पास बनायो गयो दुख दूर बर

0: फिर द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीमत बस्तर दीन बहुत साज सुदामा अपदा ते राखिया गन का पर तहकाज श्री सतगुर सौ परसन कल युग हुए राखो दास पाठ की लाज।
1: तारे संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ पुन कीरत वंत सदा सुख संपत हृदय सिद्ध ना छोड़ सथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास के तथ ताहे कहा परवा कहूं कि जाके बसीस तारे गुर हथ।
2: हमें दृष्ट शोभ करे हरेक पाप सगल मल काम क्रोध और लोभ मो वश करे सब बल सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुर नव निध दरिया जन्म हम का लख तोवे सो कहो टल गुर सेविए हैं सुसेज सुबह दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जाए।
3: सतगुरु के मां बाणिया जुग जोत समान अनपोन जा नाम टेक जित पवन गाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समान एहो राज जोग गुरु रामदास तुम ही रस जाने।
4: गुरु अर्जुन परख परमान पार्थो चले नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारे हो।
5: अंत न पावत देव सबे मनो इंद्र महाशिव जोग करी फिर वेद बिरंच विचार रहो हर जाप न साध्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रिष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन का गुर ज्योत अर्जुन महतरी।
6: तीन भवन भरपूर रहो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई आपन आप आप ही उपायो सुर नारे सुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे सुरे नारे गण गंधर्व खुजंत फिरे अब नासी चाल जोनी संपो पुरखोत्तम अंपार परे करण कारण समर्थ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो।
7: सत रूप सत नाम सत संतोख तरे उरे आदि पुरख पर तखे लिखियो अक्षर मस्तक तुरे प्रगट ज्योत जगमगा तेज पू मंडल छायो परस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा सिर लाए चित सन्मुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतरो।
0: सतजुग तै मान्यो शनो बल बावन पायो त्रित तै मान्यो राम रघुवंश कहायो
8: ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤ।

अर्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कलयुग परमाने नानक गुरे अंगद।

0: धर्म करथ वाओ प्रति रथ जते का जोर करथ वाओ रथ तपे का सत करथ वाओ कलयुग रथ यज्ञ का कूड़ करथ वाओ महला पहला।
1: श्याम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सत समय ऋग कहे रहे प्रभू राम नाम देवा महसू नय जय नानक तुम अखंड कृपा जुज में जोर छली चंद्रावन कान किसन ज